ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एक अमरीकी तजारती अदालत ने फैसला दिया है कि फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा 10% आलमी टैरिफ गैर कानूनी है। अमरीकी अदालत बराए बैन अवी तजारत ने जमेरात को ये फैसला सुनाया। ट्रंप इंतज़ामिया ने तजारती एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए वसीतर ममालिक और ख़ितों पर यह महसूल आयद किया था। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रंप के बड़े पैमाने के आलमी टैरिफ को ख़त्म करने के बाद इस ड्यूटी को मुतबादल इकदाम के तौर पर मुतारफ़ कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रंप ने इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इनमें वो महसूलात भी शामिल हैं जिन्हें ट्रंप जवाबी टैरिफ कहते हैं। सेक्शन 122 कहता है कि अदायगियों के तवाजुन में बड़े और संगीन खसारे से निमटने के लिए सदर 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ आयद कर सकता है। मुद्दयान ने दलील दी कि ट्रंप ने सेक्शन 122 के निफाज के तकाजों को पूरा नहीं किया। इस साल जापान के खसरा के केसेस की तादाद पहले ही 400 से तजावुज़ कर चुकी है, जो 2019 में इसी अरसे में रिकॉर्ड शुदा सतह के करीब है। वाज़ेह रहे कि मस्कूरा साल गुज़िश्ता दिहाई के सबसे ज़्यादा केसेस वाला साल था। खसरा एक इंतहाई मुतअद्दी वायरस की वजह से होता है जो हवा के ज़रिए फैल सकता है। ये बुखार, खांसी और ख़ारिश का सबब बनता है और शदीद सूरतों में जानलेवा साबित हो सकता है। जापान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सिक्योरिटी का कहना है कि 26 अप्रैल तक के हफ्ते के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 68 तक पहुंच गई, जिससे इस साल की मजमूई तादाद 436 हो गई। इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि इनमें से 70% लोग मुल्क के अंदर उस वायरस से मुतासर हुए जो जापान में लाया गया था। 2015 में WHO ने तस्दीक की थी कि जापान ने खसरे को ख़त्म कर दिया है। शिमाली जापान के पहाड़ों में बेहोशी की हालत में मिलने वाली खातून की मौत हो गई है। इसकी वजह रीछ का हमला हो सकता है। पुलिस

0: कहना है कि 69 साला कोमागाई चियो को इवाते प्रीफेक्चर के हाचिमान ताई शहर में बुध के रोज़ खुर्दनी जंगली पौधे चुनने के लिए पहाड़ी जंगल में जाने के बाद लापता हो गई थीं। पुलिस और इमदादी कारकुनों ने जुमेरात की सुबह जंगल के उस मकाम से तलाश शुरू की जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने मस्कूरा खातून को सुबह 8 बजे के कुछ देर बाद ज़मीन पर पड़ा पाया। मुबैना तौर पर खातून के चेहरे और सर पर जख्म थे जो बज़ाहिर किसी जानवर के पंजों के लगते हैं। पुलिस रीछ के हमले के इम्कान की तहकीकात कर रही है। शहर के हुक्काम का कहना है कि मकामी शिकारियों की जानिब से जुमे की सुबह से इलाके में गश्त शुरू करने की तवक्को है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जुमरात को कहा कि इसके 3 गाइडेड मिसाइल तबाहकुन जहाज ईरान के बिला इश्तियाल हमले की जद में आए। ईरान में हुक्काम अमरीका की तरफ से पेश किए गए अमन मंसूबे पर तबादलाए ख्याल कर रहे हैं। और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई।

0: जापान में हमें मुड़े तोड़े या बोसीदा नोट भी नजर नहीं आते।
1: जी हाँ, क्योंकि जापान का मरकजी बैंक बैंक ऑफ जापान पुराने नोटों को नए से तब्दील करता रहता है। खुसूसन 1,000 येन और 5,000 येन के नोट तो हर साल या 2 साल बाद तब्दील कर दिए जाते हैं।
0: और माशरे में नए नोटों का खसूसी किरदार भी तो है।
1: जी हाँ बिल्कुल, शादी वगैरह जैसी पुरमसरत तकरीबात में मुबारकबाद की रकम देते वक्त नए नोट खुसूसी तहनियती लिफाफे में डालकर देना आदाब में शामिल है।
0: ऐसे मौके पर नए नोट अच्छा तासर देते हैं। हमारे माशरे में भी ऐसा ही है, बल्कि हमारे यहाँ तो बच्चों को ईदी देते वक्त भी नए नोट देते हैं।
1: जापान में सिक्कों की 6 अकसाम हैं, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन। जापान में जगह जगह चीजों की फरोख्त की मशीनें लगी हुई हैं जिनमें सिक्के इस्तेमाल होते हैं। तहम इन मशीनों में 1 येन और 5 येन के सिक्के इस्तेमाल नहीं हो सकते। दुकान से खरीदारी के वक्त तक वो आपकी जेब पर बोझ बने रहते हैं।